0: Extreme energy drink.
1: Radio Vini FM. Radio Vini FM.
2: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वेक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज.

सूचना समाचार अनि मनोरञ्जन को साथी रेडियो टाइगर रेडियो टाइगर स्टूडियो टाइम यति बेला बिहानको 11 बजेको छ।